फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, अरिजीत एंड श्रेया ऑन द वोकल्स, समझावा। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज वेंसडे की सुबह शबनम साही के साथ। प्रीत इन कोलंबरुक, नमिता इन वॉल्सॉल, मीना इन सरी, स्वाति इन कैन, श्री एंड नीलम एंड सायरा एंड प्रवीण एंड संतोषी, सो मेनी मैसेजेस, थैंक यू सो मच।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
3: शिकवे शिकायतें तुमसे।
0: वॉच सहर होने को है मंडे टू फ्राइडे 9 PM ऑन कलर्स टीवी। The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by South Hole Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholetravel.co.uk. If I said to you, pick one song, any one song by Madam Noorjahan, you are most likely to pick Mahi Mera Kithe Reh Gaya, right? That same song, remixed, refixed, and I think it sounds quite beautiful. You tell me.